मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन

0: की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन

नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर

0: कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake an official visit to Mongolia and South Korea beginning today. The External Affairs Ministry said that Dr. Jayashankar will visit Mongolia and meet Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart B. Batsetseg. The External Affairs Minister will visit South Korea on the 24th and 25th of this month. During the visit, the Minister will hold discussions with Foreign Minister Cho Yan. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. Prime Minister Narendra Modi today said that the great success of International Yoga Day is a testament to the fact that yoga is not only helping millions of people across the world achieve physical well-being, but is also inspiring them to live a positive life with confidence. Sharing a Sanskrit Subhashitam in a social media post, Mr. Modi said that yoga is the means of completely calming and quieting the mind. In FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory.

0: गर्ल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते।
2: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
3: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूब ही आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
2: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना के बारे में हमें बताएं।
3: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बाद भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए।

0: बहुत खुश है।
1: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
0: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था यादव सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए, इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ संताली भाषा अष्टम तपसिल में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी, ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों मिलके बड़ो सक्सेसफुल ये मिला है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
0: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा, लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
1: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
0: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा, लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा संताली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहाँ हम जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है, आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था, ये लड़का तो वो माने अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है किताब में, हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर का पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आ गया हम लोग, जाओ पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है कैसा ही है, बोलता ना हम बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया लिख के गया लिख के गया, ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एक इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
0: प्राइमरी गांव में ही है, नुआरा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके हम कलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ही ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
0: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम। चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन

0: नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बेंगल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर। उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है ये के लिए, हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर्ड किया है। लास्ट में रिटायर्ड किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए, यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: अभी तो रिटायर्ड कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा। फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक के साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के काम करके जाएगा। जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा। कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है। इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, जितना संभव होगा मालूम नहीं।
1: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
0: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पिछड़े पड़े हुए हैं, बहुत सा नेग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेख के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसा भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटेलिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। और आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
0: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सारजोंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य अकादमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टूडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, मिल रहा है।

0: ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है, अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेगा, यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, ये अच्छा होता है।
1: टूडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टूडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.earnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

अरे जनाब, छुट्टियां लेके तो देखिए, क्योंकि छुट्टियों में हम जो चाहे वो बन सकते हैं। स्वागत है आपका तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और यहाँ है कश्मीर की वादियों में भक्ति का सजा उजियारा है, माता खीर भवानी के द्वार उमड़ा श्रद्धा का धारा है, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको।

बात अगर कश्मीर की हो तो ये कहा जा सकता है। खीर भवानी मेला, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, आज यानी कि 22 जून 2026 को ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले के तुलमुला स्थित माता रागन्या देवी मंदिर में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आपने अगर देखा है तो फिर आपको याद आ गई होगी, नहीं देखा तो हम बताएंगे आपको। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और तस्वीर में आज हम आपको बताएंगे खीर भवानी मेला के बारे में, और ये कश्मीर है।

और इसी कश्मीर में आप हैं तस्वीर देख रहे खीर भवानी की। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा और पवित्र वार्षिक धार्मिक उत्सव है। और यहाँ पे ना आपको पता है ये गांधरबल ज़िले के तुलमुला गांव में माता रागन्या देवी को समर्पित मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है। वो पर्व है आज ही अभी। इस मौके पर भक्त माता को खीर और दूध का प्रसाद चढ़ाते हैं, इसीलिए इसका नाम खीर भवानी है। और ये मंदिर श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर जगह पर है। नेचुरल वहाँ पर झरना है और माता रागन्या देवी को कश्मीरी हिंदुओं की कुलदेवी भी माना जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है तस्वीर, वही तस्वीर जिसका इंतजार आप सब करते हैं। छुट्टियों में हमने कहा आपको कि आप जो चाहे बन सकते हैं, बस छुट्टी तो लीजिए पहले आप कम से कम।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: मुस्कुरा।
1: आप हैं तस्वीर में, और तस्वीर है ये आज श्रीनगर के पास। लगभग 22 मिनट आपको लगेंगे अगर आप टैक्सी या गाड़ी से वहाँ जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो वसंत ऋतु में मंदिर में जो वहाँ का पवित्र कुंड है उसमें खीर का भोग चढ़ाया जाता है, इसी वजह से खीर भवानी के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। और जैसा कि हर बार हम आपको कहते हैं कि हर जगह की कोई ना कोई एक कहानी होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कहानी कौन सी है, जा करके उसको हम देखें तो सही। ये पवित्र मंदिर मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के तुलमुला गांव में है। सड़क मार्ग द्वारा आप जाना चाहते हैं, वो रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत, जब श्रीनगर से आप जाएंगे, क्योंकि बहुत पास है, लगभग मतलब वही 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पे, तो आपको पूरा का पूरा रास्ता बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आप जम्मू सरकार की जो बसें हैं, मेले के दौरान सरकार जम्मू और दूसरे शहरों की जो विशेष बसों की व्यवस्था भी करती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इस बार तो आपका ये इवेंट चला गया, लेकिन अगली बार के लिए आप अभी से प्लान बना सकते हैं। हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पास का बड़ा रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी, और यहाँ से इसकी दूरी है लगभग 300 किलोमीटर की। लेकिन कैसे भी जाइए, पूरे रास्ते खूबसूरती, ऐसा लगेगा बाहें फैलाए हुए आपका स्वागत कर रही है और यही कह रही है आइए।

लेकिन हम यहाँ पे आपको कहेंगे तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आज है तस्वीर। हमने आपको बताया, आप प्लान कीजिए अगली बार जाने का, और थोड़ा सा प्लान करके जाएंगे तो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जगह हैं, वो भी बड़े आराम से आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर पढ़ के जाएंगे तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक जुड़ाव है जो हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पहले से अगर हम जान लेते हैं तो थोड़ी सी रिपीट फिर से हमें याद हो जाती हैं। तो फिर आपको आज की तस्वीर में खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा और पवित्र वार्षिक धार्मिक उत्सव है, उसके बारे में हमने बताया। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अब इसको अगली बार देख के आइएगा और उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिल में बस गई, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रही। जैसे कि जब आप यहाँ जाएंगे तो उस कुंड को देखेंगे तो आपको एक अलग तरह का, जिसको कहते हैं ना कि सम्मान जगेगा। मंदिर के परिसर में ये स्थित है जलकुंड, जिसका रंग समय समय पे बदलता रहता है और उसकी अलग अलग कहानी भी है।

अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कश्मीर। अब बजने वाले हैं 12, समय हो रहा है समाचारों का, फिर से मिलने का करते हैं वादा। ओके, टाटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया

के विदेश मंत्री बी विल्सिक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: अभी हम सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को फिल्म चक दे इंडिया। और रश्मि जी, आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी लेखनी में महिलाओं का बहुत ही सुंदर रोल होता था। सिर्फ कविता और गीतों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने समाज, रिश्तों और सबसे बढ़कर महिलाओं के मन को बहुत ही गहराई से समझा। उनकी कहानियों की महिलाएं शांत जरूर थी लेकिन कमजोर कभी नहीं। उस दौर में जब महिलाओं की आवाज अक्सर घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी गई, टैगोर ने अपनी रचनाओं में उन्हें सोचने, सवाल करने और अपनी पहचान बनाने का साहस दिया।
1: जी बिल्कुल सही कहा मंजुला। और अगर आप पढ़ें स्थिर पत्र, जो इसकी नायिका है मृणाल, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो एक ऐसी महिला है जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। उसका विद्रोह ऊंची आवाज में नहीं है बल्कि उसके अपने फैसले में दिखाई देता है। वो समाज से ये भी कहती है कि एक स्त्री सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की बहू नहीं है, वो है एक स्वतंत्र व्यक्तित्व।
0: और चोखेर बाली की विनोदनी भी टैगोर की बेहद प्रभावशाली महिला पात्रों में से एक है। उसके भीतर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुद्धिमत्ता है। टैगोर ने उनके माध्यम से उस समाज पर सवाल उठाया जो महिलाओं की भावनाओं के समझने की बजाय उन्हें नियमों में बांध देता था। और घरे बायरे की विमला, उसके बारे में आप बताइए रश्मि जी।
1: हाँ बिल्कुल, वो है प्रेम, कर्तव्य और अपनी पहचान के बीच उलझी संवेदनशील स्त्री। उसके भीतर अपने अस्तित्व को समझने की एक बेचैनी है और यही उसे बेहद मानवीय बना देती है। देखिए, नष्ट नीड की जो चारुलता है उसको कोई बुला सकता है मंजुला? नहीं ना। और घर में सब कुछ होते हुए भी उसका एक अकेलापन है, उसकी अधूरी इच्छाएं हैं और उसके भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, वो सच में दिल को छू जाती है। टैगोर ने ये दिखाया है कि स्त्री का सबसे बड़ा दर्द अक्सर वही होता है ना मंजुला, जिसे कोई भी देख नहीं पाता।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही। और रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उन्होंने महिलाओं को देवी बनाकर दूर नहीं रखा, उन्होंने उन्हें इंसान की तरह लिखा, संवेदनशील, मजबूत, सपने देखने वाली और अपनी पहचान खोजने वाली। उनकी लेखनी आज भी हमें एक एहसास कराती है कि महिला को की असली ताकत उसकी आवाज, उसकी सोच और उसके आत्म

0: ये गीत आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म से, और सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज थी। और इस गीत में भी एक प्रश्न था मंजुला, उन्होंने पूछा कि घटा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही सवाल था ना, जरा दोहराओ। तो
1: मैं फिर से आज का सवाल दोहराऊंगी कि सबके लिए अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेजें, fmgoldg@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल या फिर आपके घर का एक आरामदायक कोना?
0: हाँ, एक बारी फिर ईमेल आईडी बता दूं, fmgoldg@gmail.com यानी घर आंगन, fmgoldg@gmail.com। जल्दी से भेज डालिए अपने सवाल, अपने जवाब, और हम आपको सुनवाएंगे जल्द ही।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पुल जो सीमेंट, लोहे या पत्थर से नहीं बना है बल्कि पेड़ों की जीवित जड़ों से तैयार किया गया है। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में ये हकीकत है। मेघालय को यूं ही बादलों का घर नहीं कहा गया है दोस्तों, यहाँ प्रकृति और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। खासकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ऐसे अद्भुत लिविंग रूट ब्रिजेज मिलते हैं जिन्हें बनाया नहीं जाता बल्कि उगाया जाता है।
0: वाह, क्या बात है। इन पुलों को तैयार करने के लिए रबड़ फिग या भारतीय रबड़ के पेड़ की मजबूत जड़ों को वर्षों तक सही दिशा में बढ़ाया जाता है, और बांस और लकड़ी की सहायता से जड़ों को नदी या खाई के ऊपर फैलाया जाता है, जो ये धीरे धीरे जड़ें आपस में गुंथकर इतना मजबूत पुल बन जाती हैं कि दर्जनों लोग एक साथ उस पर चल सकते हैं।
1: और इन पुलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं। जहां पे आम रेगुलर पुलों को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है, वहीं ये जीवित पुल प्रकृति के साथ मिलकर खुद को और भी सुदृढ़ बनाते रहते हैं।
0: और जो मेघालय का प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है ना मंजुला, वो जो है नोगरियाट में है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जो पुल है ये 2 मंजिलों वाला है और प्रकृति और मानवीय धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। और वहीं कई ऐसे पुल भी हैं जो 100 से 200 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके जीवन का अहम हिस्सा आज भी है।
1: बिल्कुल। और इन जीवित पुलों को संरक्षित और दुनिया के सामने उसकी महत्ता को पहुंचाने में पर्यावरणविद हेली वॉर का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने वर्षों तक इन पुलों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए काम किया। प्रकृति संरक्षण के प्रति उनके इसी समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।
0: तो अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरे ना, तो मेघालय के उस अनोखे पुलों को जरूर याद कीजिएगा जिन्हें इंसानों ने बनाया नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और प्रकृति के सहयोग से उगाया है। वाकई में मंजुला, मुझे लगता है प्रकृति सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत इंजीनियर है ना।
1: बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आदमी और इंसान फिल्म से।
1: और जो सवाल तुमने मंजुला पूछा था ना कि कहाँ जाना चाहते हो, एक जवाब आ गया है। इदरीस सैफी कह रहे हैं कि लद्दाख जाना चाहते हैं। उन्होंने कारण नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि जो वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पे पेंगोंग झील है, नुब्रा वैली है, और जो बौद्ध संस्कृति और मठ है, और तारों भरा आसमान है, और फोटोग्राफी का तो वो स्वर्ग है। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि आप भी गई है लद्दाख और मैं भी गई हूँ लद्दाख। बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत ही खूबसूरत है, और जो वहाँ का नजारा है आपको रियल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म में देख रहे हैं वो सारे सीन, तो शायद यही वजह रही।
1: तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाकी श्रोता भी लिखकर भेजेंगे, हमें मेल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे।
0: और तब तक बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमारे भारतीय परंपरा के साथ जुड़ी है। साड़ियाँ, साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है रश्मि जी, बल्कि भारत की जीवित विरासत है। इसके धागों में इतिहास है, रंगों में संस्कृति है, और हर बुनाई में सदियों पुरानी कहानियां छिपी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही साड़ियों की जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अपने भीतर एक अनोखी कहानी भी समेटे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी से। नौवारी यानी नौ गज लंबी साड़ी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका ड्रेपिंग स्टाइल जो धोती की तरह पहना जाता है, और कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के दौर में महिलाओं को घुड़सवारी, युद्ध कला और दैनिक कार्यों में सुविधा मिले, इसलिए ये शैली लोकप्रिय हुई। और यही वजह है कि नौवारी साड़ी सिर्फ परिधान नहीं बल्कि महिलाओं की शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है।
1: और जो ये विषय तुमने लिया है, मैं समझ गई मंजिला, बहुत खूबसूरत तुमने ये जो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, और ये साड़ी जो पहनी हुई है ये है मूगा सिल्क की, बहुत सुंदर है। और जो असम की साड़ी है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी प्राकृतिक सुनहरी चमक जो समय के साथ और निखरती है। ये सिल्क बहुत टिकाऊ होती है, और असम की जलवायु में तैयार होने वाला ये रेशम दुनिया भर में अद्वितीय माना जाता है। कई परिवारों में तो ना मंजुला, जो मूगा सिल्क की साड़ियां होती है ना, वो पीढ़ियों तक संभाल कर रखी जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये साड़ी भी जो मैंने अभी पहन रखी, वो ये मेरी मम्मी का है। और असम की ही एक और खास पहचान है एरी सिल्क, जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है।

0: इसमें रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। और इसी तरह कमल के डंठल्स के रेशे से तैयार की जाने वाली लोटस सिल्क साड़ियां आज सस्टेनेबल और क्रुएल्टी फ्री फैशन का शानदार उदाहरण बन चुकी है। तो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सौंदर्य का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है।
1: कितना सुंदर विचार है ये कि सौंदर्य भी है और हम संवेदनशील भी है प्रकृति के प्रति। और क्यों ना हम दूसरी साड़ियों की बात करें। बात करें भाई साड़ियों की क्वीन जो है बनारसी साड़ी की, भाई ये वाराणसी की जो कला है उसमें महीन जरी होती है, जो बूटे होते हैं, भव्य कलाकारी होती है, इसीलिए तो बनारसी साड़ी आज भी दुनिया भर की भारतीय हस्तशिल्प की पहचान मानी जाती है। और यही वजह है कि आज भी अनगिनत जो दुल्हन बनती है ना उनकी पहली पसंद अगर पूछोगे तो वो कहेंगी भाई बनारसी साड़ी होनी चाहिए। और साथ में गुजरात की बांधनी साड़ी, उसके रंग बिरंगे बिंदु डिजाइन जो है वो उत्सव का प्रतीक होते हैं। और कश्मीर की कानी सिल्क साड़ी अपनी महीन बुनाई और शाही अंदाज के लिए विशेष पहचान रखती है।
0: बिल्कुल सही। अगर आप बिहार की बात करें तो भागलपुरी सिल्क साड़ी भी अपने प्राकृतिक चमक और विश्व लोक कला को अपने रंग और आकृतियों के माध्यम से जीवंत कर देती है। वैसे साड़ियों की ये सूची और भी लंबी है। भारत के हर कोने में एक नई बुनावट, एक नया रंग, एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।
1: लेकिन आज के लिए भाई बस करो क्योंकि इन धागों में इतिहास है, रंगों में पहचान है और हर साड़ी कहती है भारत की एक नई जगह की कहानी बताती है और संस्कृति की खुशबू बताती है और परंपरा का श्रृंगार छह गज में लिपटा है पूरे देश का प्यार।
2: चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे,

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म बहारों के सपने, और एक मेल लगता है और आ गया जो रश्मि जी पढ़ने वाली है।
1: ये एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं चरणदास जी, ये बता रहे हैं शिमला जाने के

0: उन्हें अच्छा लगता है। और वो एक बात बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं मंजुला, वो कह रहे हैं क्यों ना पेड़ पौधे लगाए जाए और पूरी धरती को सुंदर बनाया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। और वैसे तो मैं शिमला जाना चाहता हूँ पर शिमला जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा, उन्होंने दोनों बातें कही, उन्हें शिमला जाना भी है और उनका ये कहना है कि अगर हम पेड़ पौधे ढेर सारे लगाए तो हर शहर शिमला बन जाएगा।
0: और राजू अग्रवाल चौधरी हिसार से हैं, ये भी जुड़े हैं।
1: बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे कि अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं गृहिणी, अरे वो तो बस एक हाउसवाइफ है, लेकिन क्या ये गृहिणी केवल घर संभालने वाली महिला होती है? शायद नहीं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माता है। किसी भी देश की पहली पाठशाला वो उसका घर ही होता है और उस पाठशाला की पहली शिक्षिका माँ होती है। वही बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और संस्कारों का पाठ पढ़ाती है। एक डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक या नेता बनने से हर व्यक्ति एक परिवार का सदस्य होता है उसके पहले, और उसके व्यक्तित्व की नींव घर में ही रखी जाती है।
0: जी, जो गृहिणी होती है वो दोस्तों भोजन ही नहीं बनाती, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, घर ही नहीं सजाती बल्कि रिश्तों को भी सहेजती है। वो केवल बजट ही नहीं बनाती बल्कि सीमित संसाधनों में संतुलन और प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैं तो कहूंगी सबसे अच्छी मैनेजर जो होती है वो घर की जो गृहिणी होती है, वो छोटा सा जिसे कहते हैं ना एक पूरा घर हाउस होल्ड मैनेज करती है। देखो उसको ना कोई वेतन होता है ना कोई छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी उसका योगदान जो है वो अनमोल है। उसके श्रम और त्याग और समर्पण का कोई मूल्य ही नहीं है, वो किसी आंकड़े में मापा ही नहीं जा सकता। वो तो अपने परिवार के माध्यम में, सच कहूं, समाज और राष्ट्र के भविष्य को आकार देती है। दोस्तों
1: बिल्कुल सही कहा। और आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें उन लाखों गृहिणियों को भी सम्मान देना चाहिए जो बिना किसी पहचान या फिर प्रशंसा की उपेक्षा के प्रतिदिन राष्ट्र निर्माण में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रही हैं।
0: तो जब अगली बार आप किसी महिला को कहें ना सिर्फ हाउसवाइफ या कहते सुने तो याद रखिए कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि एक राष्ट्र निर्माता है। और सच बताऊं वो घर का आधार है, और जैसे खुशबू बिखेरती है ना, वो ऐसे खुशबू बिखेरती है पूरे घर में जैसे हो कोई रजनीगंधा।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी रजनीगंधा। और लग रहा है कि आप फिर से एक मेल पढ़
1: रही हैं। जी बिल्कुल, एक और संदेश आया है हमारे पास पूनम का मुंबई से। वो कह रही है मैं फूलों की घाटी जाना चाहती हूँ। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और इसमें यहाँ मंजुला बहुत दुर्लभ और सुंदर फूल रहते हैं और बर्फीली चोटियाँ, हरी भरी वादियाँ, वाह शांत वातावरण है। कहती है कि यहाँ पर ट्रैकिंग का बहुत आनंद है, यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल जी जी, मैं जा चुकी हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
1: भाई रास्ते में झरने हैं, नदियाँ हैं, मनमोहन दृश्य है। तो बहुत, हम तो कहते हैं आप जरूर जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए। और कहीं कुछ मंजुला और कुछ कहना चाह रही हैं।
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग और भी मेल भेजिए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि दो दिन की छुट्टी के बाद आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। हमारा मेल आईडी नोट कीजिए, fmgoldga@gmail.com। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो हमारे सबसे जुड़ी हुई है। हम अक्सर अपने जीवन में तनाव, चिंता और थकान के का कारण काम के दबाव को समझते हैं, समय की कमी को समझते हैं या परिस्थितियों को मानते हैं। लेकिन रश्मि जी, कई बार असली कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक लोग, हानिकारक आदतें और टॉक्सिक विचार होते हैं जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम करते हैं।
1: मुझे लगता है उनकी तरफ तुम देखा ही मत करो, है ना। क्योंकि कभी ऐसा सामना भी हो ना जो इस प्रकार के लोग मिले, तो उनसे संबंध तोड़ना हमेशा संभव तो नहीं होता, लेकिन स्वस्थ दूरी बना लें और अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए और सीमाएं तय कीजिए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इसी तरह कुछ आदतें भी हमारी जीवन में जो है वो टॉक्सिसिटी का काम करती है। हर समय अपनी तुलना दूसरों से ना करें, सोशल मीडिया पे ना रहें। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे विचार। कई बार हमारा सबसे बड़ा आलोचक कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं। मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सब विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब भी ऐसे विचार आए उन्हें चुनौती दीजिए, अपने आप से वही बातें कीजिए जो अपने किसी प्रिय मित्र से करते हैं।
1: जी बिल्कुल। एक बात याद रखिए कि बगीचे में जो है स्वस्थ पौधे उगाने के लिए उसके लिए नए बीज लगाना पड़ता है, खरपतवार हटानी पड़ती है। तो जो जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए अच्छी चीजें जोड़नी पड़ती हैं। और साथ ही ये भी सोचिए कि स्पर्धा जो है वो अपने आप से करें, अपने आलोचक खुद बनिए। और जो दूसरे अगर कभी आलोचना करें तो उसे भी स्वस्थ आलोचना मानकर अपने में सुधार करने की जरूर कोशिश करें। क्यों मंजुला?
0: बिल्कुल सही। तो आइए छोटा सा संकल्प लें कि ऐसी आदतों से हम दूरी बनाएंगे और पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता, वो हमेशा बना के रखेंगे।
1: जी

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से, खूबसूरत सा गीत।
1: और यहाँ तीन देवियां हैं और स्टूडियो में दो देवियां हैं।
0: बिल्कुल सही। और अभी इन देवी को एक और मेल आया है हमारे पास। वंदना जी लिख रही हैं, संदेश आया है उनका न्यू दिल्ली से कि उनको रणथंभौर नेशनल पार्क जाने की बहुत इच्छा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपकी इच्छा पूरी हो बहुत ही जल्द। और ये मेरा भी फेवरेट है, तो भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जहाँ बाघों को उनके प्राकृतिक आवास देखने में रोमांच मिलता है।
1: जी, वहाँ पर देखिए बाघ तो है ही, साथ में सांभर, चीतल और नीलगाय भी हैं। और भाई सफारी का जो रोमांच है वो तो भाई जीप और कैंटर सफारी के दौरान जंगल, झीलों और वन्य जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है। जो किला है ना रणथंभौर किला, वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। मंजुला, बहुत खूबसूरत जगह है रणथंभौर। और फोटोग्राफी का तो क्या कहने भाई, मजेदार फोटोग्राफी, प्रकृति का आनंद।
0: और टाइम आपके लिए सबसे अच्छा अक्टूबर से लेके फरवरी तक रहेगा, क्योंकि उस वक्त ठंड में जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
1: जी बिल्कुल, जब जंगल की खामोशी में बाघ की हार सुनाई दे तब समझो रणथंभौर ने अपना असली जादू दिखाया है ना। तो वो किस्मत वाले होते हैं जो जिनको वहाँ बाघ देखने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल, तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कुछ ब्यूटी की। सौंदर्य का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि स्वस्थ रहना भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो त्वचा, बालों और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।
1: जी आइए जानते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ आम जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें पहचानने के आसान तरीके क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पैराबीन्स की। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उत्पाद लंबे समय तक खराब ना हो। लेबल पर मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन जैसे नाम दिखे दोस्तों शैम्पू में, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए।
0: और दूसरा है सल्फेट्स। ये शैम्पू और फेस वॉश में झाग बनाने के लिए डाले जाते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS संवेदनशील त्वचा को रूखा बना सकते हैं। और तीसरा नाम है जो नाम नहीं है बल्कि उस पर लिखा होगा अगर आपके बॉटल्स पे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और आर्टिफिशियल कलर्स। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रेग्रेंस, परफ्यूम या आर्टिफिशियल कलर जैसे साधारण शब्दों के पीछे दर्जनों केमिकल्स छिपे हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग

0: एक्सपीरियंस वाले उत्पादों को सोच समझ के चुनना चाहिए।
1: जी, जो भी खरीदें पढ़ें जरूर कि क्या उसमें है, मौजूद चीजें क्या है। एक और ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन। ये पेट्रोलियम से प्राप्त एक सस्ता तेल होता है दोस्तों, जिसे कई क्रीम, लोशन और हेयर ऑयल में भी मात्रा बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक डाइज भी होते हैं, जो भी भाई मैं तो कहूंगी चिंता का विषय ही रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है मंजुला कि इन्हें पहचाने कैसे?
0: बहुत ही आसान है कि खरीदारी करते समय ब्रांड या विज्ञापन पर नहीं बल्कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान दें। तो याद रखिए, जागरूक उपभोक्ता बनना ही सबसे बड़ा सौंदर्य मंत्र है। सुंदरता तभी सार्थक है जब उसके साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा भी जुड़ी हो।
1: हाँ, और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, मेरे साथ परेशानी ये होती है कि चश्मा नहीं होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाती इंग्रेडिएंट। ज्यादातर दोस्तों ये इंग्रेडिएंट बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखे होते हैं। तो सही तरीका ये होता है कि अपने मोबाइल कैमरा से उसकी फोटो खींच लीजिए और उन्हें एनलार्ज करके पढ़ लीजिए, भाई कहीं इसमें पैराबीन तो नहीं है, सल्फेट तो नहीं है, जो है ये मिनरल ऑयल तो नहीं है, ये सब देखिए, ये सब पढ़ लीजिए। जागरूक उपभोक्ता बनेंगे तो ये सबसे बड़ा सौंदर्य का मंत्र है ना।

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म है अपना देश। इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तेसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,100

2018 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में जिनकी बातें मैं करने वाली हूं, उनका नाम जानने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग सुनना है, तुरंत पहचान जाएंगे आप। तो मैं बोलती हूँ, आप सुनिए ध्यान से। मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, अमरीश पुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में राम लखन फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना आकाशवाणी फिल्म गोल्ड पर। दोस्तों ये गाना फिल्माया गया था माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया पर, साथ ही नजर आए अमरीश पुरी। और इस फिल्म में उनका जो किरदार था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बिशंबर ठाकुर वो बने थे इस फिल्म में और अच्छा खासा डराया था उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को। दोस्तों जब भी भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों की बात होती है तो अमरीश पुरी का नाम ज़रूर लिया जाता है। पंजाब के नवाशहर में जन्मे थे अमरीश पुरी 22 जून 1932 को, यानी कि आज ही के दिन। अमरीश पुरी ने ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो शिमला के एक कॉलेज से की थी और फिल्मों में जो उनका आना है वो इत्तेफाक नहीं था। जी हाँ, उनके चचेरे भाई अपने ज़माने के बहुत बड़े अभिनेता थे, नाम आपने ज़रूर सुना होगा, KL सहगल। जी हाँ, सहगल साहब को देखने के बाद अमरीश पुरी और उनके दो भाइयों ने, चमन और मदन ने, ये डिसीजन ले लिया था कि उन्हें भी फिल्मों में आना है। लेकिन कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो शायद आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, अमरीश पुरी सीधे सीधे फिल्मों में नहीं आए, कुछ हो गया था उनके साथ, बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले ये गाना, कहीं ना जाना।

कुमार सानू की आवाज में परदेस फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। महिमा चौधरी, अपूर्व चौधरी, शाहरुख खान और अमरीश पुरी इसमें नजर आए थे और अमरीश पुरी ने बड़ा ही बहुत ही शानदार इसमें किरदार निभाया था किशोरी लाल का। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने भाई, चचेरे भाई केएल सहगल को देखने के बाद अमरीश पुरी और उनके दो भाइयों ने मन बना लिया था कि भाई हमें भी मुंबई जाना है और फिल्मों में नाम कमाना है। तो पहले उनके जो बड़े भाई हैं चमन और मदन, उन्होंने किस्मत आजमाई और दोनों ने खूब शोहरत भी हासिल की। मदन पुरी को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वो बेहद मशहूर खलनायक रहे अपने ज़माने के। अब छोटे भाई यानी कि अमरीश पुरी भी पहुंचे मुंबई और उन्होंने भी ऑडिशन दिया। ये 1950 का किस्सा है। अपने भाइयों की तरह उनके फिल्मी जो करियर है उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। जी हाँ, अमरीश पुरी अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए और उन्होंने अपने लिए कोई दूसरा विकल्प सोच लिया कि बस नहीं, एक्टिंग शायद अभी नहीं हो पाएगी। तो अमरीश पुरी ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली और सोचा कि चलो अब एक ये जो परमानेंट काम है, नौकरी है।

कैब खर्चा चल जाएगा, एक्टिंग का देखते हैं। लेकिन शौक तो बड़ी चीज़ होती है भाई, शौक कहाँ इंसान का निकलता है अंदर से। आगे कुछ ऐसा हुआ कि फिल्मों तक उनकी राह आसान हो गई, बताऊंगी आपको कैसे। उससे पहले दामिनी फिल्म का ये गाना, आपको कहीं नहीं है जाना। हाँ,

0: ऐसे गाने सुनने के बाद तो चैन और सुकून दोनों उड़ जाते हैं, बस कहीं खो जाते हैं हम। दोस्तों, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में दामिनी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना। और इस फिल्म में आपको एक बहुत ही खतरनाक वाला किरदार याद होगा, इंद्रजीत चड्ढा। जी हाँ, ये पूरी फिल्म में गूंजता रहा था। दोस्तों, इस फिल्म के लिए अमरीश पुरी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला था। आगे और बातें करेंगे उनके बारे में, लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाना।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं अमरीश पुरी साहब की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ऑडिशन में वो फेल हो गए थे, इसके बाद अमरीश पुरी ने सोचा कि क्यों ना एक परमानेंट नौकरी की जाए जिससे खर्च वगैरह निकल जाए, तो उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन एक्टिंग का जो शौक था वो उन्हें थिएटर तक ले आया। धीरे धीरे उनका अभिनय बहुत बेहतर हुआ, कनेक्शंस बने और वो पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए जिसे राज कपूर चला रहे थे। जल्दी अमरीश पुरी जाने माने थिएटर आर्टिस्ट बन गए और 1979 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। दोस्तों, 70 के दशक में अमरीश पुरी को फिल्मों में काम मिलने लगा। अमरीश पुरी ने इस दौरान कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए और अच्छी खासी पहचान उस टाइम भी बना ली थी। आज मैं कुछ ऐसे गाने लेकर आई हूँ जिनमें कहीं कहीं अमरीश पुरी जरूर नजर आए हैं। कुछ गानों में नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि लगभग सभी गानों में जो भी मैं आपको सुनाऊं वो कहीं कहीं आपको महसूस हो कि हाँ, इस सीन में अमरीश पुरी थे। तो ये गाना

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना ये गाना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। और इस फिल्म का अगर आपने देखा होगा तो एक डायलॉग होता है जो अमरीश पुरी की आवाज में होता है, और उस डायलॉग के बाद सुकून आ जाता है लोगों के चेहरे पर। पूरी फिल्म में बेचैनी है, पूरी फिल्म में कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से लोग कभी उदास होते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। लेकिन फिल्म का जो फाइनल सीन है, उस सीन में जब अमरीश पुरी कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो बस पूरी जो फिल्म है ना उसकी लाइम लाइट वो चुरा ले जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था अमरीश पुरी साहब का। और आप तो जानते ही हैं कि अमरीश पुरी जो है उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म रही है ये DDLJ, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, एक और फिल्म की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ी पहचान मिली थी अमरीश पुरी साहब को, और ये जो फिल्म है ये हम पाँच 1980 में रिलीज़ हुई थी। हम पाँच में पहली बार अमरीश मेन विलेन के तौर पर नज़र आए थे, और हम पांच में उनकी आवाज़, उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो उनका जो अभिनय है उसको खूब तारीफें मिली थी। अब इस वक्त तक, यानी कि 1980 तक, अमरीश पुरी फिल्मों के एक जाने माने खलनायक बन चुके थे।

गदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। बड़ा ही खूबसूरत गीत है ये, थोड़ा सा इमोशनल वाला वर्जन मैंने आपको सुना दिया। वैसे मैं प्रेम वाला सुनाने वाली थी कभी कभी ये वाले गाने भी सुनने चाहिए, थोड़े से इमोशनल वाले। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट विलन कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था गदर फिल्म के लिए अमरीश पुरी साहब को। जी हाँ, और ऐसे बहुत सारे नॉमिनेशन उनके नाम रहे। दोस्तों, अमरीश पुरी को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला और 8 बार उन्हें नॉमिनेशन मिला बेस्ट विलन कैटेगरी में। इसके अलावा उनके नाम एक बहुत ही अनोखा सा रिकॉर्ड है, बेस्ट विलन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस का जो अवार्ड है वो भी अमरीश पुरी के नाम ही है। जी हाँ, और आप तो जानते हैं कि अपने हर किरदार में वो किस तरह से जान डाल देते थे। शायद आपको याद हो सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता के चौधरी साहब, या फिर आपने देखा हो दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन की फिल्म शक्ति का जेके, और हीरो फिल्म का पाशा तो आपको पक्का याद होगा, और मेरी जंग फिल्म का ठकराल, त्रिदेव का भुजंग, घायल का बलवंत राय, और आ आ आ उनके करियर का जो माइलस्टोन माना जाता है वो कौन सी फिल्म है बताइए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मिस्टर इंडिया फिल्म का मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ,

कश्मीरी में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 22 तारीख व दिन है सोमवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगे सुमो, मनपा मृदकर्षक श्री लोपसंग तोप्तेन, तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गियारी और तानिम ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन

0: और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है।

0: ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, में प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे मनहर उदास की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे संजय मर्फ्यू और साथियों की आवाज में चंद बुगुन गीत।

0: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे संजा मर्फ्यू और साथियों की आवाज में चिन बुगुन गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर की 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग की 5th BA 5th सेमेस्टर की छात्रा छंगपल हमू से समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं छंगपल हमू दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवंग में 5वीं सत्र की छात्रा हूँ। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात में समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर चंद शब्द बोलना चाहूँगी। महिला एक शब्द पर अर्थ अनेक व घर की शांति हो या समाज का बदलाव दोनों का केंद्र है। समुदाय विकास का मतलब है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, और जब महिलाएं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाती है, क्योंकि महिला वही शक्ति है जो परिवार को संभालती है और समुदाय को जोड़ कर रखने का काम करती है। आज की महिला घर की सीमाओं तक सीमित नहीं, वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सफाई अभियान, परिवार पोषण जैसे हर क्षेत्र में अपना कदम जमा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में

0: महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG ने मजबूत आर्थिक क्रांति लाई है। इन समूह महिलाओं को अपनी कमाई बढ़ाने का, अपने व्यवसाय शुरू करने का और अपने परिवार को सशक्त बनाने का साहस दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान असाधारण है। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा दीदियां और नर्सों ने गांव-गांव जाकर मां बच्चे की स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह सिर्फ सेवा नहीं करते बल्कि जागरूकता भी फैलाती है, बच्चों की पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल तक। शिक्षा के विस्तार में भी महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार और समुदाय को शिक्षित करती है। आज अनेक महिला शिक्षिकायन और समाज सेवी लड़कियों को स्कूल जाने, सपने देखने और आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। पंचायती राज में महिलाओं की 33% से भी अधिक भागीदारी ने गांव की निर्णय प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है। आज गांव की सरपंच बहने पानी, सड़क, सफाई और शिक्षा से जुड़े निर्णय बड़े आत्मविश्वास से ले रही है। श्रोता, महिलाओं के बिना समुदाय विकास की कल्पना अधूरी है। उनका दृष्टिकोण अलग है, उनका तहरिया अलग है और उनकी संवेदना अलग है। ये तीनों मिलकर समुदाय को मजबूती, समानता और एकता देते हैं। अंत में जहाँ पर महिला विकसित है, समुदाय विकसित है और जहाँ समुदाय विकसित है वहाँ देश समृद्ध होता है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की BS 5th सेमिस्टर की छात्रा थंगपल हमू से समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर चंद शब्द। इसके साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर की 3:34 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म हिना से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को शब्द व संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म टाइगर जिंदा है से गीत ज्योति नूरान की आवाज में गीतकार थे इरशाद कामिल व संगीता विशाल शेखर का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे जावेद अख्तर द्वारा शब्द फिल्म एक दीवाना था से। लियोन डिसूजा और सुजैन डिमेलो की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

फिल्म एक दीवाना था कि इस गीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए

0: नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे बेनी दयाल और शेफाली अरवल की आवाज में, फिल्म ये जवानी है दीवानी से। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, वसंगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से गीत बेनी दयाल, नाजिया हसन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाज में गीतकार थे अनविता दत्त और संगीता विशाल शेखर का। श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से। शब्द रचना है कुमार और अहमद अनीस के, व संगीत है शारिब तोशी और जवाद अहमद का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मय त्रिपदा की आवाज में ये गीत। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, व संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अन्विता दत्त द्वारा शोधबद्ध फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। सोनम पुरी और नीति मोहन की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म जवानी जानेमन से गीत यासर देसाई की आवाज में गीतकार थे देव शीख खंदूरी व संगीता गौरव और रोशनी का। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे कुमार द्वारा शतपथ फिल्म दे दे प्यार दे से। सुनिधि चौहान और नवराज हंस की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है विपिन पटवा ने।
1: We are controlling transmission.

श्रोताओं, आप सुने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना, विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में यूनिवर्सल कंपेशन कप 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भरोसे, विकास और जन कल्याण के 12 साल थीम के तहत जिला स्तरीय जन कल्याण शिविर आयोजित। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज और अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से पराजित किया। और फीफा विश्व कप में आज ग्रुप जेड में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच 10:30 बजे शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के लिए 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यक अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया जाएगा। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए

0: की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्त के साथ।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में यूनिवर्सल कम्पेशन कप 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं बल्कि उन महत्वपूर्ण मूल्यों का जश्न है जिन्हें बढ़ावा देने के लिए परम पावन दलाई लामा ने अपना जीवन समर्पित किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट जांग शमजांग ब्रदर्स यूथ एसोसिएशन द्वारा परम पावन 14वें दलाई लामा के 51वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट जिला उपायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में भरोसे विकास और जनकल्याण के 12 साल थीम के तहत जिला स्तरीय जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया जिसमें प्राकृतिक खेती पर खास जोर दिया गया जिसका मकसद किसानों और आम लोगों को प्राकृतिक खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मिट्टी की सेहत का प्रबंधन मूल्य संवर्धन रोजगार के अवसर और जनता के लाभ के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के फायदों के बारे में जागरूक करना था। ये कार्यक्रम किसानों सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बातचीत का एक मंच बना जिसमें टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक जारी है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों की सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। बैठक का मुख्य विजन वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से
1: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ. जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बुतमोंग बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। इस यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री सो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कराईकल में भी 2 दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों तवांग और शी योमी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही पापुमपारे, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चिता मित्रों पर सहरिया जनजातीय के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इनकी महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का

0: दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार।
1: महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया। मैनचेस्टर में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट पर 161 रन बनाए थे। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले फ्लोरिडा में आज ग्रुप एच में केप वर्डे और उरुग्वे के बीच मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। ग्रुप जी में मुकाबले कल रात कैलिफोर्निया में ईरान और बेल्जियम के बीच खेला गया और मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। इससे पहले अटलांटा में ग्रुप एच के मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार दर्ज जीत करके अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने की और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट दर्ज की गई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांति काल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. In a measured employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026 and 2027, focusing on social welfare, infrastructure, development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, he has announced the recruitment of 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting being carried by National Security Advisor Ajit Doval brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. The gathering takes place as India holds the BRICS chairship for the fourth time in 2026, having previously led the grouping in 2012, 2020, 16 and 2020-21. India's chairmanship operates under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflecting Prime Minister Narendra Modi's people-centric vision articulated at the 2025 Rio Summit. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shiopur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. The Parliamentary Standing Committee on External Affairs, chaired by Member of Parliament Shashi Tharoor, has begun a four-day study visit to Jammu and Kashmir and Ladakh to review strategic border security and foreign policy issues. The panel is examining recent developments in India's bilateral relations. The suspension of the

संगीत जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म रेफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गीत फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:50 पर रीजनल न्यूज 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म खेलिए हम जी जान से सुरहेल सेन की आवाज में। आज रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुने हमारे केंद्र से कल यानी 23 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना जिसमें आप सुन सकेंगे लामा गुम्बू डकपा, लामा लोपसंग मुरुब और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जिसमें आप सुन सकेंगे दीपेन बरुआ की आवाज में चंद असमिया फिल्मी गीत। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात जिसमें आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 9वीं कक्षा की छात्रा ड्रेमा चुकी से स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने का महत्व विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म दिल्ली 6 से मोहित चौहान की आवाज में गीत फिल्म ओम शांति ओम सिकेके की आवाज में गीत फिल्म आरक्षण से मोहित चौहान श्रेया घोषाल और न्यूमैन की आवाज में गीत और फिल्म पार्टनर से सोनू निगम कुणाल गांजावाला और सुजी क्यू की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म बैंग बैंग से हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज में गीत फिल्म जुग जुग जियो से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाज में गीत फिल्म बुलबुलैया 2 से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में गीत फिल्म बूथ 1 से अखिल सचदेवा और मार्शल गुजराल की आवाज में गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से बेनी दयाल और शेफाली अलवर्स की आवाज में गीत फिल्म बधाई दोस्त से अरिजीत सिंह और रूपाली मोगे की आवाज में गीत फिल्म जबरिया जूरी से यासिर देसाई और अल्तमाश फरीदी की आवाज में गीत फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में गीत फिल्म लाल सिंह चड्डा से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग मुनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नाम था। कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में श्री धूपतन राशि से 5:35 पर कार्यक्रम दांगपोक समा और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म आशिकी से चंद गीत। शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन

8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

Ну, да. Мы зубовые сюда,

Boy.

Bhagavad Gita,

Adiando. Oh,

단전에서 다다 시든 내리마 대시키메 곰바 집주 뒤진 것과 운제 나온 진

0: Si Cristo no lama sang di choga shiden san na dumbur lenye na utyap ka desik lungchen ka tawang ka man pak lerim bana cha san tudur agash wane tawang lenye thama nubdik chuze nisung dur da ngok shubu lerim agash wane te likya jile yeshu su na na hindi ke seyo ning shuk inji ke seyo suze nisling ka mlinga cha san na sa.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकलकर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी

0: 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवंग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से सब्जी फसलों में रोग एवं कीट विषयों पर भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रामा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है। तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
2: धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर अभिमन्यु जी के साथ चर्चा करेंगे सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि रोग और कीट में क्या अंतर है तथा किसान यह कैसे पहचान सकते हैं कि फसल में रोग से प्रभावित है या फिर कीटों से।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोग जो होते हैं ना, प्रमुख रूप से फंगस से होते हैं। फंगस हिंदी में कवक कहते हैं। और इनका जो काजल एजेंट होते हैं वो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। बहुत ही माइक्रो लेवल पर इनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ रोग निमेटोड्स से भी होते हैं, वो भी बहुत टीनी साइज में होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं। और कोई भी फसल के संपर्क में आते हैं तो फसलों में बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि पत्ती लाल होती है, पीली हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ये रोग हो गया। इसके अलावा कीट चूंकि आंख से देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: कीट बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। कीट के लार्वल स्टेज ज्यादातर फसलों को नुकसान करती है और कीट प्रमुख रूप से फसलों को किसी न किसी रूप में काटते हैं या पत्ती को काट देंगे, होल कर देंगे। इस प्रकार का लक्षण आता है, तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रोग और कीट का।
1: क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत सारे उगाए जाते हैं, कई बार कई लोगों को ये पता नहीं चल पाते हैं कि उनके सब्जी में कुछ तो हुआ है, अच्छी नहीं आ रही है कुछ, या पीले पड़ गए हैं या कीड़े खा गए हैं। ये तो आपने बताया, देख सकते हैं ये जो कीट से जो प्रभावित है उसे तो देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि उनको पता नहीं चलता कि प्रभावित किस चीज से हुआ है या फिर इसकी क्या इलाज करे, ये पता नहीं चलते हैं। तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में इन सारे चीजों का समाधान भी बताए जाएं तो हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। अगर हम विशेष रूप से तवांग के बारे में चर्चा करें तो तवांग में आपने देखे होंगे अब तक यहाँ पर मिर्चे बहुत लगाते हैं, चिली फार्मिंग बहुत किया जाता है, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो लोकल मिर्चे होते हैं वो लगाते हैं। तो मिर्चे में कई बार ये समस्या आते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं या फिर कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसा करके बहुत सारे समस्याएं आने लग। इसको कीट से प्रभावित होते हैं, रोग से कैसे पहचाने?
2: मिर्च में प्रमुख समस्या जो है एक एंथ्रेक्नोज रोग होता है, उसके कारण होता है। ये फंगस फफूंद से होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होता है कि मिर्च की पत्तियां ना ब्राउन कलर के हो के ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब पत्तियां में ब्राउनिश हो जाएगा, मीन्स उसका जो हरा कलर है ना वो कम हो जाएगा, तो पत्तियां कमजोर हो जाएंगी। उसमें हरा कलर कोई भी पौधे में होता है, प्लांट में क्लोरोफिल के कारण होता है। फंगस क्या करता है कि ब्राउनिश कलर होने से मतलब क्लोरोफिल के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे उनका फोटोसिंथेसिस से उनका जो खाना बनने की जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, वो स्लो पड़ जाती है और पौधा हमारा कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा मिर्च का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पत्तियों के अलावा ये मिर्च की फली लगी है तो उसमें भी भूरे भूरे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, जो कि बाद में काले भी हो जाते हैं और बड़े स्पॉट में हो जाते हैं। तो ये प्रमुख सिम्टम है, प्रमुख लक्षण है पहचान का कि ये हमारा एंथ्रेक्नोज रोग लगा हुआ है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है हम ऑर्गेनिक तरीके से इसका कंट्रोल करें, एक केमिकल का प्रयोग करके करें। तो जनरली तवांग में या पूरे अरुणाचल में हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो तो हम कोशिश करेंगे कि केमिकल का प्रयोग न हो तो ठीक है जी, तो ऑर्गेनिक तरीके से क्या है कि एक बीटी पाउडर होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है। इसका 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर वाटर डोज हिसाब से इसको जहां हमारा एंथ्रेक्नोज बीमारी लगी है वहां हम इसको स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। और 10 दिन बाद दोबारा हम इसका

0: बीटी स्प्रे करना चाहिए। हमारा ये जो पत्तों का भूरा कलर है ये सब कम हो जाएगा। यदि रोग बहुत ज्यादा किसी पौधे में ज्यादा लगा है तो हम अपने खेती से उस पौधे को उखाड़ के खेत से दूर गड्ढा खोद के उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी ढक दें, क्योंकि नहीं तो फंगस से पूरे खेत में ये रोग फैल सकता है।
1: जी, और वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं मिर्च के जो बीज बुआई से पहले जो हम किए जा सकते हैं?
0: हाँ, सीड ट्रीटमेंट की जैसे बात आती है कि मिर्च में हम जब नर्सरी में बीज लगाते हैं उस समय हम मिर्ची के बीजों को ट्रीटमेंट कर दें और नर्सरी में लगाएं, तब हम उनमें कुछ डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑर्गेनिक तरीका, एक है इनऑर्गेनिक तरीका। दोनों लाभदायक है, क्योंकि जहां तक हम लोग केमिकल से डरते हैं, केमिकल से डरना चाहिए, लेकिन हर केमिकल का एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है। अधिकतम केमिकल 20 से 25 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाविस्टीन एक फंजीसाइड आता है फंगस को मारने वाला, 1 ग्राम दवा से हमारा 1 किलो तक बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि उसके बीज के ऊपर चारों ओर दवा को अच्छे से छिड़क के हल्का सा पानी हो करके और मिक्स कर देना चाहिए, ताकि वो बीज पर वो दवा चारों ओर से अच्छे से लिपट जाए, तब हमको खेत में डालें। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप में हो जाएगी, फंगस जो अटैक करते हैं, तमाम प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करते हैं, उनका अटैक कम हो जाएगा। दूसरा है बायो कंट्रोल तरीके से, उसके लिए ट्राइकोडर्मा से भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, मतलब अगर 1 केजी मिर्च का बीज है तो 5 ग्राम, इसको भी इसी तरीके से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक बायो एजेंट है, मिर्च के बीज पर चारों पाउडर को छिड़क के हल्का सा पानी मार के मिक्स कर देंगे तो ये बीज में चिपक जाएगा। फिर हम बीज को नर्सरी में डालेंगे तो हमारा बीज हेल्दी उगेगा, जो मिट्टी में तमाम प्रकार के फंगस होते हैं अटैक करते हैं, उससे हमारे नर्सरी में जो बीमारी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा नर्सरी के दौरान ये हम उपयोग इसका कर सकते हैं।
1: अगर सब्जियों में कीटों से प्रभावित होने वाले हैं तो उसके शुरुआती लक्षणों को हम कैसे पहचाने, एक किसान उसे कैसे पहचाने?
0: कीट तो अलग अलग स्टेज पर लगते हैं, जैसे कि हम कोई भी फसल खेत में लगाएं, तो एक कटुआ वो क्या करता है, जैसे मिर्चा लगाएं, गोभी लगाएं खेत में, नर्सरी से उखाड़ के मेन खेत में लगाएं, तो पौधे नरम होते हैं। वो क्या करता है कि मिट्टी की सतह से बराबर में रात में निकलता है मेनली और काट देता है, तो जिससे हमारा लगाया वाला ही पौधा कट जाएगा तो आगे प्रोडक्शन तो होगा नहीं। के ट्रीटमेंट के लिए भी दो तरीका है, या तो नीम बेस्ड जो कुछ ऑर्गेनिक तरीके से मतलब कंट्रोल करने वाला निम्बी सिडीन वगैरह होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या किसान अगर केमिकल वाला रास्ता अपनाए तो उसके लिए फोरेट होता है, पेस्टिसाइड होता है, उसका उपयोग कर सकते। फोरेट महीन दानेदार केमिकल होता है, उसको खेत में जब हम पौधे लगाते हैं स्प्रेड कर देने से जो कटवर्म होता है वो मर जाता है, तो हमारी खेती बच जाती है।
1: और जैसे कि तवांग एक पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, तो क्या बदलते मौसम से हमारे जो सब्जियाँ हम उगाते हैं उस पे कोई प्रभाव पड़ते हैं?
0: बारिश का मौसम ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा होता है, उस समय जो कीट होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी स्पेशली जब गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी में कीटों का मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, और कीटों का मेनली लार्वल स्टेज 90% केसेज में लार्वल स्टेज डैमेज करती है हमारे खेत में। जो फीमेल फ्लाई होती है जो भी कीट की, वो एग लेइंग करती है, एग लेइंग के बाद अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, कोई 1 हफ्ता बाद, कोई 10 दिन बाद वो लार्वल स्टेज में आ जाते हैं। वही लार्वल स्टेज हमारे खेती को डैमेज करते हैं, कभी वो पत्ती पर रेंगते हुए खेतों में देखते हैं, हरे हरे होते हैं, कोई भूरे कलर के होते हैं, वो पत्ती पर जाते हैं, उनका कोई क्लोरोफिल समाप्त कर देता है, मतलब क्लोरोफिल मतलब हरा कलर जो पत्तियों का होता है क्लोरोफिल से होता है, वो खा के समाप्त कर देता है। कभी क्या होता है कि पत्ती वो पूरा जाली जाली जैसा बना देता है। गोभी में स्पेशली पत्ता गोभी में देखिए, फूल गोभी में वो हरे हरे डायमंड नाम से कीड़ा होता है, डायमंड बैक मॉथ, वो क्या करता है, वो उसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, वो फूल गोभी में जाके छेद कर देता है अंदर, तो वो भी हमारा नुकसान करता है। फूल गोभी में भी वही लार्वल स्टेज होती है, वो भी नुकसान करती है, तो उसका अलग से स्मेल, गंदी स्मेल आती है और फूलगोभी का क्वालिटी खराब हो जाता है। विभिन्न प्रकार से अलग अलग किस्मों में, बैगन में देखिए, बैगन में फ्रूट फ्लाई होती है, वो अंडे देती है, वो अंदर जब बैगन से उनका लार्वल स्टेज होता है, बैगन जब मैच्योर होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि खाने के लिए जब हम काटते हैं तो दुर्गंध आता है और हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे बहुत प्रकार से फल में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, अवस्थाएं होती है कीटों की, स्टेजेज होते हैं और वो फसल को नुकसान करते हैं।
1: हमारे ये चर्चा जो है सब्जी फलों में रोग एवं कीटों से प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है इसी पर हो रहे हैं, तो मैं ज्यादातर यहाँ पर जितने ज्यादा सब्जियाँ उगाते हैं इस पर केंद्रित करना

0: चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इस समय बहुत सारे लोग मिर्चे लगाते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगी। तो जब उसमें फल लगने के समय आते हैं तो जो मिर्चे उसमें लगते हैं उसमें कई बार मिर्चे जो है सिकुड़ जाते हैं, कभी उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, कई बार फीके से रंग हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं, या फिर पानी से भर जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? अगर इन सारे जो समस्या होते हैं इनको रोकथाम करने के लिए अभी हम क्या तरीका अपना सकते?
1: वही हम लोग जैसा कि अभी डिस्कस भी किए थे कि उसमें कुछ कीड़े से होता है, कीट से होता है, कुछ बीमारियों से होता है। तो कीट में अभी हमने जिक्र भी किया था कि जैसे डायमंड बैक मॉथ होता है, इसका लार्वा जो है हरे कलर का होता है और पत्तों को क्लोरोफिल को मतलब पत्ते के हरा पौधा को खा जाता है, जाली जैसे दिखता है। ये हमारा मिर्च में भी होता है, गोभी वर्गीय फसलों में भी ये होता है, बैगन में भी लगता है ये। तो इसका कंट्रोल के लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। नीम बेस्ड जो एक हमारा प्रोडक्ट होता है, निम्बिसाइड या निम्बिसिडीन, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्रोडक्ट नाम है। इसका डोज जो है 5 ml लिक्विड 1 लीटर पानी में, इस डोज से 5 ml निम्बिसिडीन पर लीटर वाटर हम स्प्रे करेंगे। जब भी हमको खेत में कीट दिख रहा है और उसका एक हफ्ता बाद फिर से दोबारा हम स्प्रे कर दें तो हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी खेती को बचा सकते हैं। इसके अलावा एफिड्स आते हैं, एफिड्स का प्रकोप जब ज्यादा गर्मी वाला मौसम होता है तब होता है। एफिड क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे कि सरसों के दाने के बराबर। वो क्या करते हैं, पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं और वो पत्तों का रस चूस लेते हैं। जब पत्तों का रस चूस लेंगे तो पौधे हमारे कमजोर हो जाएंगे, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह रेट कम हो जाएगा, मतलब पौधों की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाएगी, तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा और हमारा खेती को नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भी हम निम्बिसिडीन का उपयोग कर सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर वाटर इस रेट के हिसाब से। कुछ कटवर्म्स हमने बताया था आपको, कुछ जो कि खेतों में जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं वो या नया रोपे गए पौधे, उनको नरम नरम पौधों को जमीन की सतह से काट देते हैं, उसमें भी हमारे खेती नुकसान हो जाता है। तो के लिए तो एक बीटी पाउडर होता है, बैसिलस थुरेंजिसिस, एक ये बायो पेस्टिसाइड है। उसका होता है कि 1 kg प्रति एकड़ की दर से, एकड़ तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर छोटा एरिया है तो 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी, 1 gram पर लीटर वाटर। इस डोज से हम अगर इसको स्प्रे कर दे तो हम बीटी काटन को बायोलॉजिकल तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी।
1: बोरर्स होते हैं जो कि छेद कर देते हैं फल में, पत्तियों में, पौधों के तने में, स्टेम में छेद कर देते हैं, तो हमारे सब्जियों के पेड़ कमजोर हो जाएंगे, फ्रूट्स क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्पेशली बैगन में बोरर का बहुत अटैक होता है, टमाटर में बोरर्स का अटैक होता है, तो हमारी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इसमें भी जो हमने बताया कि बायो तरीके से अगर करना चाहें तो बीटी पाउडर का स्प्रे, 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी में मिला के स्प्रे करें। एक बार में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो 7 से 8 दिन बाद दोबारा हम स्प्रे कर सकते हैं।
0: पत्ता गोभी या फूल गोभी को लेकर चर्चा करें तो उनमें ऐसा एक बहुत असामान्य सा बाद में वो जाकर आकार लेते हैं और उनके जड़ों में एक गांठ जैसे पाए जाते हैं।
1: हाँ, ये रोग है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक रॉट। एक ब्लैक रॉट होता है, एक क्लब रॉट होता है। पहले क्लब रॉट में आते हैं। क्लब रॉट में क्या होता है कि गोभी वर्गीय फसलों की जड़ें फूल जाती है, गेंदा के आकार के बॉल के शेप में हो जाती हैं। इससे भी क्या होता है कि पौधा कमजोर हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, पौधा फूट के उसमें जड़ें फट जाती हैं, तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स वाटर अपटेक कम हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो हमारा प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा आता है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका हम 10 gram प्रति लीटर वाटर की दर से, जहाँ ऐसा दिख रहा है कि पौधों गोभी वर्गीय फसलों की में क्लब मतलब गोल गोल उनकी जड़ें हो रही हैं, तो वहाँ हमको स्प्रे कर देना चाहिए। ब्लैक रॉट की जो बीमारी आती है दूसरी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जड़ों अंदर से खोखली हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं, और इसका एक बहुत अच्छा लक्षण पत्तियों पर दिखता है, गोभी वर्गीय पत्तियों पर। अंग्रेजी के वी, पीले रंग का वी आकार बन जाता है गोभी वर्गीय फसलों में। अगर अंग्रेजी का वी आकार अगर गोभी वर्गीय फसलों में हमें दिखे, हमको ये समझ जाना है कि इसकी जड़े में ब्लैक क्राउट है, एक फंगस है, वो अटैक कर दिया है।
0: पत्तों पर दिखेंगे?
1: हाँ, ये पत्तों पर दिखेंगे। इसका भी है कि बीटी काटन का छिड़काव करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट जो है बैसिलस थुरेंजिस, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्प्रे करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि जहां एक बार में ब्लैक रॉट का अटैक दिखे वहां दोबारा हमको गोभी की फसल 3 साल तक नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। बहुत खतरनाक

0: बैक्टीरिया ये होता है, प्लस क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाना है। फिर एक है हमारा डाउनी मिल्डू आता है, पीला झुलसा रोग। इसमें क्या है कि हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह में भी हमारी ये बीमारी आती है। इसमें क्या है कि निचले पत्ते पर पीले पीले रंग के धब्बे मिल जाते हैं। जब पीले पीले धब्बे हो जाएंगे तो हमारे फसल कमजोर हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारे जो पत्तियां झुलस भी जाती हैं, मुरझा भी जाती हैं। तो इसमें भी हमको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे करने से हम पीला झुलसा रोग मतलब डाउनी मिल्डू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हम जरूरी चीज ऐड कर दें कि झुलसा रोग ब्लाइट का भी प्रकोप बहुत होता है। यहाँ हमने जो देखा है आलू में प्रमुख रूप से लग रहा है, बैगन में भी लग रहा है और टमाटर में भी लग रहा है, इनमें मेजर है और मिर्च वगैरह में माइनर है। तो झुलसा रोग में क्या होता है कि पत्तियां जो हैं, चाहे आलू की हो चाहे टमाटर की हो, पत्तियां किनारे किनारे से सिकुड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। पहले ब्राउन कलर की होंगी, फिर बाद में काले रंग के हो जाते हैं। और ज्यादा प्रकोप होने से आलू का खेत हो या बैगन का टमाटर का खेत हो, दिखेगा कि पूरा पौधे एकदम मर से गए हैं, झुलस से गए हैं। ऐसा ज्यादा प्रकोप होने, ज्यादा अटैक होने पर ब्लाइट का ऐसा दिखेगा। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके कंट्रोल के लिए भी हमको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए, 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से ऑर्गेनिक तरीके से। और इसमें केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि ब्लाइट कंट्रोल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो रहा है तो। क्योंकि ब्लाइट कंट्रोल 10 दिन में ही बहुत तेजी से, कहने का मतलब हमारे फसलों को मार देता है, एकदम खत्म कर देता है। क्योंकि जो बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो तरीके से थोड़ा स्लो प्रोसेस में इनका प्रभाव होता है। तो अगर किसान चाहें तो ब्लाइट कंट्रोल के लिए एक केमिकल का भी सजेशन कर सकते हैं, मैंकोजेब एक रसायन होता है, फंजीसाइड होता है, मैंकोजेब कॉपर का फंजीसाइड होता है। 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम इसको मिला करके और हम स्प्रे करें। एक चीज बहुत जरूरी है, जब भी हम खेतों में कोई भी दवा या कुछ भी स्प्रे करें तो उसमें ध्यान दें कि तेज हवा ना चल रही हो, बारिश ना हो रही हो, ओपन फील्ड कंडीशन में। अगर पॉली हाउस में है तब तो ठीक है, नहीं तो बाहर ओपन फील्ड कंडीशन में तेज हवा चल रही है तो स्प्रे हमारा सही से नहीं होगा। अगर बारिश होने की संभावना है तो भी अभी हम स्प्रे करके जाएंगे, वो पानी गिरने से पूरा बह जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका भी पौधों में वो ट्रांसलोकेशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो भी हमारा वेस्टेज होगा, दवाई का प्रभाव अच्छे से नहीं होगा। तो इन सब बातों को भी हमको स्प्रे करते समय ध्यान देना।
1: कार्यक्रम के अंत में स्वस्थ लाभकारी एवं सतत सब्जी खेती के लिए आप सब्जी उत्पादक किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अच्छे किस्मों का हम चुनाव करें, अधिक उत्पादन के साथ साथ हमारी बहुत सारे किस्में हैं जो कि बहुत सारे रोग और रोग रोधी किस्में हैं। तो किसान भाई ऐसे किस्मों का चुनाव करें और तमांग के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो किस्में हो, कम पानी में हो ताकि पानी की भी हमारी बचत हो, कम न्यूट्रिएंट वाले भी हो, इससे भी हमको न्यूट्रिएंट की भी हो। ऐसी बहुत सारी अनेक विभिन्न प्रकार के फसलों में सब्जियों किस्मों का विकास किसानों ने किया है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट और साथ में हाइडलिंग वैरायटीज हैं। ऐसा करने से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, पर्यावरण का भी इसमें ध्यान रख सकते हैं और हमारा खेती से होने वाली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। जब हमारा लागत कम होगा तो निश्चित रूप से हमारा इनकम बढ़ेगा।
1: तो आज आपने एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में समय निकाल कर आए और हमारे किसान श्रोताओं को सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन किस तरह से करनी चाहिए इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से सब्जी फसलों में रोग एवं कीट विषयों पर भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थी दर्जी ड्रामा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर के, संगीत है अनु मलिक का।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पिछले 12 वर्षों में हुए बदलावों ने शासन और प्रशासन के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि इन परिवर्तनों ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने ये बात केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखे गए एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री गोयल के लेख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान सुशासन, जनकल्याण तथा गरीबों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों की यात्रा को रेखांकित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज राज्य के लोक निर्माण, गृह, राजनीतिक, सीमा मामले, सूचना एवं जनसंपर्क तथा बागवानी विभागों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। बैठक में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान को और तेज करने, अरुणाचल फिल्म नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा ऑर्किड और कीवी मिशन के अंतर्गत पायलट परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आगामी वर्ष के लिए परिणामोन्मुख और केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलापूर्ति, शिक्षा, उद्योग सहित कई अन्य विभागों के साथ भी लक्ष्य निर्धारण और प्रदर्शन समीक्षा बैठक आयोजित की जा चुकी है। परिवहन राज्य मंत्री ओजिंता सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवाओं APSTS की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभाग के जनरल मैनेजर मृतोदुर्जी, वरिष्ठ अधिकारी तथा मैसर्स तार मोटर्स, मैसर्स फोर्स आबोतानी मोटर्स और मैसर्स अशोक लेलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण परिचालन और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें अधिकृत डीलर्स द्वारा मरम्मत किए जा रहे वाहनों की शीघ्र आपूर्ति, मार्ग विशिष्ट आधार पर बसों की तैनाती, विभिन्न जिलों में कर्मचारियों की तैनाती, टायर और स्पेयर पार्ट्स की समय पर उपलब्धता तथा लंबे समय से लंबित प्रशासनिक बाधाओं को समाधान करना शामिल रहा। बैठक में कार्यकुशलता बढ़ाने, सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए निर्बाध और व्यावसायिक राजनयिक सार्वजनिक सेवा परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दिया गया। तवांग DDSC हृदार फुनसोक ने आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकादमिक थुपतेन वांगचू तथा CRCC बोंखार दोर्जी नोरबू के साथ सरकारी माध्यमिक विद्यालय सेरू और बोम्बा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शिक्षकों से संवाद कर शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की, मिड डे मील का निरीक्षण किया तथा विद्यालय परिसर में चल रहे आधारभूत संरचना एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन भी किया। छात्रों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और पोषण मानकों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों तवांग और शिओमी जिले को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही पापुमपारे, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले फ्लोरिडा में आज ग्रुप एच में कैप वर्डे और उरुग्वे के बीच मैच 2-2 से बराबरी पर रहा। ग्रुप जी के मुकाबले में कल रात कैलिफोर्निया ने ईरान और बेल्जियम के बीच खेला गया मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। इससे पहले अटलांटा में ग्रुप एच के मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज करके अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। आधार ऐप ने इस वर्ष जनवरी में लॉन्च होने के बाद से 3,10,00,000 से अधिक डाउनलोड को आंकड़ा पार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ऐप को तेजी से अपनाया जा रहा है और ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अपनी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने वाले इस ऐप पर भरोसा करते हैं। लगभग 40,00,000 लोगों ने इस ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, जबकि करीब 8,50,000 लोगों ने अपना पता अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया है। ऐप में एक क्लिक करके आधार लॉक या अनलॉक करने, उपस्थित प्रमाण के लिए फेस वेरिफिकेशन, प्रमाणिक इतिहास देख

0: shared lunch with the students. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। फिल्म खेले हम जी जान से सोहेल सेन की आवाज में शब्द रचना है जावेद अख्तर की व संगीत है सोहेल सेन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म खेले हम जी जान से किसी गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है, समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म अनारी से उदित नारायण की आवाज में, शब्द रचना है समीर की व संगीत है आनंद मिलन का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत बटना पाटन से आप है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रोटी से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, वसंगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है लोगर ठाकुरान वाला फिरोजपुर पंजाब से। आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म रॉकी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी के, संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से आप है मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म अलवेला से सी रामचंद्र और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण व संगीत है सी रामचंद्र का। इस गीत की हमें फरमाइश की है जलालाबाद वैसे आप हैं सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।

श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म डिस्को डांसर से बप्पी लहरी की आवाज में। शब्द रचना है अनजान के, वह संगीत है बप्पी लहरी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पेगंग लोहसा पे पेमा टशी तंजन दवा और लोपसंग।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और फ्रांस का

0: सामना इराक से होगा। अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैलिफोर्निया के फुलटन में कल से शुरू। FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया और विश्व मुक्केबाजी कप में ज्योति ने जीता एकमात्र स्वर्ण पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट्स में से एक फीफा विश्व कप से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने देश की ओर से सर्वाधिक गोल करने के करीब पहुंच गए हैं। सलाह ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में 3-1 की जीत में अपना 68वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जो अब मिस्र के मौजूदा कोच होसाम हसन के करियर रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल कम है। यह विश्व कप में उनका तीसरा गोल था। इससे पहले 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे।
2: Salah scores for Egypt. A World Cup in which the brightest stars have shone. Dominic's first time. Egypt secured their first ever win at the World Cup. And they do so by beating New Zealand by 3-1.
1: प्रतियोगिता में पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्डे का शानदार सफर जारी है। ग्रुप एच में काबो वर्डे ने 2 बार की चैंपियन उरुग्वे के साथ 2-2 से मुकाबला ड्रॉ किया। इससे पहले काबो वर्डे ने स्पेन को भी अपने पहले मैच में ड्रॉ पर रोका था। लगातार दूसरे ड्रॉ के साथ ही काबो वर्डे ने टूर्नामेंट में दूसरा अंक भी हासिल कर लिया है और टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की रेस में बनी हुई है। मैच की शुरुआत से ही काबो वर्डे का दबदबा देखने को मिला। टीम ने मैच के 21वें मिनट में उरुग्वे के खिलाफ 1-0 से बढ़त बनाई। टेल्मो अरकाजो की फ्री किक को केविन पिना ने शानदार गोल में तब्दील किया। यह काबो वर्डे का विश्व कप इतिहास का पहला गोल भी रहा। हाफ टाइम से पहले ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। उरुग्वे की ओर से मैच का पहला गोल मैक्सी अरुजो ने किया। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे ने मैच में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। टीम के लिए दूसरा गोल अगस्टन केनोबियो ने किया। काबो वर्डे के लिए 60वें मिनट में फरेला ने गोल करते हुए 2-2 से स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा।
2: Oh, it's a little bit wayward. There's a chance and a goal for 2-2. Cabo Verde are level in the match.
1: ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन शानदार गोलकीपिंग और मजबूत डिफेंस के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अभी भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। टीम के अनुभवी मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने शुरुआती मिनट में ही लंबी दूरी से शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई। इसके बाद डी ब्रुइन और लिएंड्रो ट्रोडार्स ने मिलकर कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेरानवंद ने शानदार बचाव करते हुए बेल्जियम को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 ही रहा। निर्धारित समय के बाद मिले 5 अतिरिक्त मिनटों में भी कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ।
2: And it's an instinct, I think, just to reach out in panic. Another fine save from Barron. It's a shutout at the Los Angeles Stadium.
1: ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्पेन की इस जीत में युवा खिलाड़ी लामिल यामल और स्ट्राइकर मिकेल ओयार जाबल ने अहम भूमिका निभाई। यामल ने 1 गोल किया जबकि ओयार जाबल ने 2 गोल दागे। स्पेन का पहला गोल 10वें मिनट में यामल ने किया। टूर्नामेंट में यह उनका पहला गोल था। मैच के 30वें मिनट में स्पेन की बढ़त को एमेरिक लोपोर्ट ने दोगुना कर दिया। इसके सिर्फ 3 मिनट बाद स्पेन ने एक और शानदार टीम गोल किया। डेनी ओल्मो ने मौका बनाते हुए गेंद ओयार जाबल के पास की, जिन्होंने शानदार वॉली लगाकर अपना दूसरा और स्पेन के लिए मैच का तीसरा गोल किया। पहले हाफ में 3-0 की बढ़त लेने के बाद स्पेन पूरी तरह नियंत्रण में था। दूसरे हाफ में सऊदी गोलकीपर ने उनके शॉट को रोक लिया, लेकिन गेंद की दिशा सऊदी खिलाड़ी हसन अतलामबख्ती से टकराकर बदल गई और अपने ही गोल में चली गई। इसके बाद भी स्पेन ने सऊदी अरब के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और मैच को 4-0 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन के 2 मैचों में 4 पॉइंट हो गए हैं और टीम

0: ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है।
1: Spain have four. Any goal is to sum up the way things are going for Saudi Arabia. It is that one. But that's it.
0: Vishesh Shukla, Sports Scan.
2: और अब रुक कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां भारत का दबदबा जारी है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में यह भारत का पांचवां स्वर्ण पदक है। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। और अब बात मुक्केबाजी पर। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप में कल ज्योति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: ज्योति ने 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में उज्बेकिस्तान की फरजानो फजिलोवा को 5-0 से हराया। भारत ने फाइनल में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक भी जीते। 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी को चीन की वू यू के हाथों 0-5 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने भी रजत पदक जीता। टूर्नामेंट में शानदार सफर के बाद भी वो अपने टाइटल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की निगीना उक्तामोवो के हाथों 0-5 से हार गयी। पुरुष वर्ग के 70 किलोग्राम में दीपक ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में दीपक को कजाकिस्तान के अबलाई खान जुसुपोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में जुगनू और निखिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए, जिससे पदकों की संख्या 6 हो गई। इनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अभियान सफल रहा। महिला टीम ने 5 मुक्केबाजों के साथ 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार नेतृत्व किया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रीति पवार, साक्षी और प्रिया ने स्वर्ण, जबकि परवीन ने रजत पदक अपने नाम किया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात माइंड गेम शतरंज पर। तमिलनाडु के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इनियान पा ने मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए 361 ग्लोबल शतरंज महोत्सव के मास्टर वर्ग का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: Inian Pa of Tamil Nadu, the top seed, lived up to his billing, dominating proceedings from start to finish to emerge champion in the Masters category of the 361 Global Chess Festival, which concluded at the World Trade Center in Mumbai. Already in sight of the title after the penultimate round, the composed 24-year-old national champion settled for a quick and short draw against Ajay Santosh Parvathareddy to claim one of the biggest chess titles in the country in his debut appearance and the winner's purse of Rs. 8 lakh. The Erode-based GM Inian amassed 7.5 points to emerge champion, maintaining an unbeaten stint, conceding only 3 draws. Boris Savchenko had to settle for a draw against Akash Sharachandra Dalvi and finished second with 6.5 points. Nitin Babu clinched the Challengers category and Madhvendra Pratap Sharma triumphed in the Junior Masters category. Both Nitin and Madhvendra have directly qualified to play the Masters category in the 10th season scheduled for next year. For Sports Scan, this is S. Kishore from Mumbai.
2: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के कृष्णा नागर, तुलसीमती मुरुगेसन, नित्याश्री, सुमति सिवन और नितेश कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा ने पुरुषों के सिंगल्स SH6 फाइनल में चार्ल्स नोक्स को 21-19, 21-11 से हराया। कृष्णा ने अपने खाते में 2 कांस्य पदक भी जोड़े। महिलाओं की सिंगल्स SU5 स्पर्धा में तुलसीमती ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नित्याश्री महिलाओं की सिंगल्स SH6 स्पर्धा में विजेता बनी। वहीं नितेश कुमार ने पुरुषों के सिंगल्स SL3 स्पर्धा में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। नवीन शिव कुमार पुरुषों के सिंगल्स SL4 स्पर्धा में उप विजेता रहे। मानसी जोशी और तुलसीमती मुरुगेसन ने महिलाओं की डबल्स SL3 SU5 स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भी मिक्स डबल्स SL3 SU5 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। भारत के कांस्य पदक विजेताओं में पुरुषों के सिंगल्स WH1 में प्रेम कुमार आले, महिलाओं के सिंगल्स WH2 में अल्फिया जेम्स, पुरुषों के सिंगल्स SL3 में प्रमोद शामिल थे। प्रमोद और सुकांत कदम ने पुरुषों के डबल्स में भी कांस्य पदक जीता। पुरुष सिंगल्स SL4 में सूर्यकांत यादव, पुरुष सिंगल्स SU5 में ऋतिक रघुपति और महिला सिंगल्स SU5 में मनीषा रामदास ने भी कांस्य पदक जीते। डबल्स WH1 WH2 स्पर्धा के महिला वर्ग में रुचि त्रिवेदी और पोलैंड की नतालिया ग्रजिब ने कांस्य पदक

0: जीता। इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में अबू हुवैद और पल्लवी कलू वेहल्ली ने तीसरा स्थान हासिल किया। SL3 SU5 स्पर्धा के महिला डबल्स में संजना कुमारी और शांतिया विश्वनाथन और मिक्स डबल्स में नितेश और तुलसीमती मुरुगेसन ने कांस्य पदक जीता। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से कैलिफोर्निया के फुलटन में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
2: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पे काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान की चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91 स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेस से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात रिले चैंपियनशिप पर। चीन के शांघाई में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में टीम ने महिलाओं के 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में रजत और 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में भारत दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रही। अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल FIH प्रो लीग रोटरडैम लीग के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। कार्यवाहक कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी शानदार कप्तानी और मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात क्रिकेट पर। महिला आईसीसी T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कल भारत को 6 विकेट से हराया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 159 रन के लक्ष्य को 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेरिसन कैप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएस

0: एसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस

0: योजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक हरिदासपुर पारादी खुर्दा रोड बलंगीर नौपाड़ा गुनुपुर लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल

0: का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।